0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m.
2: जरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
3: अहमद हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
5: FM247365.
6: Let's celebrate
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शुआबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
5: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे भागो।
1: अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
4: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काफी सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया।

0: 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश.
1: And
5: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
6: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
1: And
7: तूफान है हर जीत की पहचान है.
1: And
5: Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
1: And
8: MCB Bank for Life.
1: And
5: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator.

0: टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा। श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
6: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: AGS ट्यूबलर, दिखाए काम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
9: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
4: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: And जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय चेस कैश।
4: And
10: Live Lighter, have a weight management conversation with your doctor today।
4: And
11: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा।
4: And
12: तूफान है हर जीत की पहचान है।
4: And
10: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: And
6: MCB Bank for Life।
4: And
10: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving। No Frost, No Worries।
7: Like us on facebook.com/FM247365।
13: FM 247365.

0: एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, जो मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
4: and Jo Chahe Khareedo, Paise Aaram Se De Do, Ye Lo Bhai Just Cash,
5: and Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today.
6: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: And toofan hai, har jeet ki pehchan hai.
8: And Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
9: And MCB Bank for life.
10: And Hire kar naya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
11: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
12: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
15: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखे।
16: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
17: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
14: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
18: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
14: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़राए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
19: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
20: FM 24/7 947-365.
21: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
22: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
21: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
23: جی ہاں مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
22: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
21: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم نہیں.
23: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
22: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
23: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے
21: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
22: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
21: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
24: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
7: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम,
5: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी,
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL,
7: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश,
8: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर टुडे,
9: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
6: एंड
10: तूफान है
6: and
2: Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% aage badho bina ruke,
6: and
11: MCB Bank for Life,
6: and
12: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving, No Frost No Worries,
6: and
13: aaj hi Hire Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
14: FM247365.
15: Let's celebrate
16: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: किसने कहा था पैसे बचा?

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल से मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
6: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
6: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL,
7: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश,
8: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे,
9: एंड

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
3: And HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
4: एंड
5: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
4: एंड
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
4: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
4: एंड
7: तूफान है
4: And
5: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% aage badho, bina ruke.
4: And
8: MCB Bank for Life.
4: And
9: Hire ka naya, no frost IoT refrigerator. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.
10: Azra behen, zara baat to suno. Hato piche, bhago.
11: अहमद हटू वहाँ से।
12: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
13: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: किसने कहा

0: This program is brought to you by Aji, Hire Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए.
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: Back to back, only music, no RJ talk. Only music.

0: your location for maximum music.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबिन जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. हजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
6: FM 24/7 365 back to back only music no RJ talk this is FM 100 come on

0: 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Aji, Fire Mini LED TV Line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hato piche, bhago.
4: अहमद हटू वहाँ से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
2: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: FM247365 FM247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
1: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye pegham. حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: Renu by JazzCash.
2: अभी JazzCash app download करो और ये लो के through payment करो.
3: अजरा बहन, जरा बात तो सुनो. हटो पीछे, भागो. अहमद, हटो वहाँ से.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
5: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
6: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
7: Assalamu alaikum pakistan.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहां से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
6: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं एंड एमसीबी बैंक For life and
2: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
0: FM 100 like us on facebook.com/fm247365 FM 247365
3: This is

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: एमसीबी वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
8: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
11: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
7: एंड एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
11: एंड
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
13: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
14: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
15: Happy Hour with Nadeem Akhtar.

अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने। हैप्पी आवर्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक करेंगे खूब हल्ला तेगुल्ला। इस अलगुले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और रात को गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ये भी मेहरबानी होगी। आप कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब 3636 पर। लेकिन उससे पहले मैं करता हूं आप लोगों को वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना, और गाना चलाने से पहले आज संडे का शो है जनाब, संडे फंडे छुट्टी का दिन, इसके हवाले से बात जरूर होती है। छुट्टी वाले दिन बड़ा सुकून के साथ आदमी उठता है, आज छुट्टी है भाई, और कुछ स्पेशल होता है या नहीं होता है, खुसूसी तौर पर नाश्ता, तो की नाश्ता की तदसी ये भी जरूर बताइएगा। और फिलहाल आप लोगों को वार्म अप करते हैं, और वार्म अप करने के लिए चलाते हैं गाना, तो पहला गाना हेलो पढ़ो। ये गाना मैं उन लोगों को डेडिकेट कर रहा हूं जो इधर उधर हुए हैं, और उनको कहूंगा आ जाए।

0: Welcome back a Inghis Soneon. जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। अभी आर्ज में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636। बस फिलहाल तो जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है वो खाने पीने के हवाले से हो रही है। डिशें जो हैं वो बड़ी पॉपुलर होती हैं। अच्छा, हमारे हर सूबे की भी डिश का अपना एक मजा है, और इसी तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा से अगर चलें तो वहां के चपली कबाब और कढ़ाई न सिर्फ केपीके में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। केपीके की जो कढ़ाई है और चपली कबाब है, और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ये तमाम खाने पीने की चीजें मिलती हैं, मगर वो टेस्ट जो के केपीके में जाके खाने में है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वैसे तो हमने कढ़ाई की जो शक्ल है वो ही बिगाड़ दी है अपने जायके के हवाले से, अपनी मर्जी के मुताबिक हम कढ़ाई बनाते हैं, मगर कढ़ाई बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल खुश्क, सिर्फ बोटियां खाओ तुसी मसाले वाली। अच्छा, मसाला भी उसमें भी इतनी ज्यादा मिर्ची नहीं होती जो केपीके में खाई जाती है, और फिर केपीके के बाद आप पंजाब साइड से आ जाओ, पंजाब के खाने कौन कौन से, पंजाब की स्पेशली जो डिशेज हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं ये आप बताइए 10 मिनट। और गयाज मेरा शहजादा क्या कह रहा है, पहले से बहुत बेहतर मौसम है जनाब, बहुत। अब भाई आगे क्या लिखा हुआ है तुमने, मैं कोई गलत ना पढ़ लूं गयाज भाई, बहुत क्या, ये मुझे कुछ गलत बात लग रही है गयाज, इसको सही तरीके से करके लिखो। हमारी तरफ चनों के साथ आलू सलाद और भी मिलते हैं, और भी मिलते हैं क्या मतलब, चलो चनों के साथ आलू का सलाद, आलू का सलाद क्या हो गया गयाज भाई, गर्मी लग गई क्या, न्यारी पाए कि क्या बात है। पंजाब की डिशा दसो तुसी, मुल्तान की कौन सी चीज सबसे ज्यादा मशहूर है, खाने पीने के हवाले से पूछ रहा हूँ, ये आपने मुझे बताना है गयाज भाई, आपने बताना है खुसूसी तौर पर, आपने बताना है जी, ते हैं जी। शहनाज अरूज भी आ गई हैं, शहनाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैसेज कर दिया, और मुश्क कहती हैं थम्स अप, अंगूठा क्यों दिखा रही हूं हैं, वजह तो बताओ, अंगूठा मत दिखाओ, बात करो खाने में तुम्हें क्या पसंद है ज्यादा ये बताओ, भूख लगा रही है नदीम भाई, यार मुझे भी लग गई है यकीन मानो। बनारस में घूम रहा हूँ, यहाँ पे एक पिशावरी चपली कबाब वाला है, मैं भी अभी आपको बताता हूँ, शॉप है चपली कबाब पे नली डालकर देता है, ओए होए होए होए होए भाई, हो जाए फिर मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ बनारस से ले आ चपली कबाब। वैसे बनारस के चपली कबाब बहुत ज्यादा पॉपुलर थे किसी दौर में, और अभी पता नहीं वो वहां पर है या नहीं है, ये बता रहा है अभी भी है। और गुड़ का शरबत, आय हाय हाय हाय, ड्राई फ्रूट डाले हुए होते हैं उसमें, गुड़ का शरबत जो है वो मैंने पिशावर में पिया हुआ है भाई, वैसे तो यहाँ पर भी मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी भी क्या बात है, गुड़ के शरबत पिया कभी आप लोगों ने, गुड़ का शरबत यार कोई बता ही नहीं था, खाने में नहीं लग, सबको भूख लग रही है बता नहीं रहा। चले इसी बात पर हम जाते हैं एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक के जाने पर।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by
2: Yellow by JazzCash.
3: अभी JazzCash app download करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो। अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
4: अहमद हटो वहाँ से।
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
2: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी। घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
9: 100 FM।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। एंड MCB बैंक For life and
10: hire का नया no frost IoT refrigerator, twin inverter technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving, no frost no worries.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
11: कुदरत का निजाम तवाज़न पर कायम है।
12: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
13: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
14: हमारी जिम्मेदारी है।
15: खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
16: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM 100, 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
17: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
1: हैप्पी आर विद नदीम अख्तर।
0: वेलकम बैक सुनियो। हाँ भाई, तो समी कह रहे हैं भूख लग रही है, तो समी लेकर आ रहे हो चपली कबाब या नहीं ला रहे हो ये बता दो। इसी बात पर यार आप लोगों को लेकर चलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक के जानब, क्योंकि हमने चर्चा काफी कर ली है पिछले लिंक में, गाना नहीं चलाया। तो अभी आपको हम जो ट्रैक सुना रहे हैं, ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे उम्र बाप को। ओ मेरे बाप, ये ट्रैक आपके लिए। एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दीजिएगा, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुनियो। हैप्पी आवर्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक, और तीन बजे तक ये अलग अलग जारी है सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के अच्छा लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। और जनाब खाने पीने के हवाले से बात हो रही है, तो खाना पीने के लिए आप कहीं भी जाते हैं तो आप पैसे जाहिर खर्च होते हैं, तो ये दौर जो है ये अब बदल गया है। इवन ये कि मुर्गी वाले के पास ठेला जो लगाते हैं, मुर्गी वाले, बड़ी दुकान की बात नहीं कर रहा, सब्जी वाले के पास, सबके पास जो है वो स्मार्ट पेमेंट का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है थ्रू कार्ड के। तो ये सीन बड़ा अच्छा है, सिक्योर है। तो इसी बात पर मैं आपको कहूंगा कि HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ पाए आप मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच। और वाजिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नदीम भाई, मेरी रिक्वेस्ट है सज्जाद अली का गाना। हाय हाय, आपकी रिक्वेस्ट सज्जाद अली की जरूर चलेगी। उसकी वजह यह है कि सज्जाद अली का मेमन फैमिली जो है वो भी बड़े फैन है, और मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ सज्जाद अली का। तो सज्जाद अली का गाना मेरे शो में जरूर चलता है, तो अब आपने फरमाइश की है तो जरूर चलाएंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो वाजिद साहब सुनते रहो। और जनाब ये क्या कह रहे हैं समी भाई, समी भाई की कह रहे हो तुझे, कुछ नहीं कह रहे, और मुश्क कह रही है। मुश्क का मैसेज हम पढ़ते हैं, कहती हैं थमस का मतलब छोलों की वैरायटी अच्छी है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। एक बार गुरु मंदिर सोल्जर बाजार से घर वाले छोटे पार्सल लाए थे, सफेद चने थे, मगर मसाला सिया और तेज था, सख्त डबल से खाते हैं, इसमें स्मोक की खुशबू महसूस होती है, अच्छा लगा था, बहुत मशहूर है, ठेले पे लगाते हैं। अच्छा लगा था, और देखो किसी मुंह बना बना कर बता रहे हैं। अच्छा लगा था, सही है सही है, अच्छी बात है मुश्क। और गयास क्या कह रहे हैं, गयास जो भी कह रहे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको लेकर जाएंगे जनाब एक बहुत जबरदस्त से ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक वाजिद की जानेब से सबको डेडिकेट करेंगे। उसके साथ साथ मेमन फैमिली जितनी भी है उनको भी डेडिकेट करेंगे, और हमारे प्यारे सलीमुद्दीन यूसुफ जई को भी डेडिकेट करेंगे, और हमारे एक इमरान भाई हैं रिक्शे वाले, उनको भी डेडिकेट करेंगे।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना.

0: Brought to you by Archie, Higher Mini, LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
1: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ
2: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
8: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
9: Happy Hour with Nadeem Akhtar.

ये बेरुखी क्यों? रंगीला भाई, आपका ये पहला मैसेज आया है, यकीन मानिए। इससे पहले जितने भी मैसेजेस आए हैं मैंने तमाम के तमाम रीड किए, यकीन मानिए। हैं जी, ते हैं जी, अभी मैं चेक भी कर रहा हूँ कि कोई यह हो या मैसेज हो जो हमने रीड ना किया हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं है। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, सारे मैसेज रीड किए हैं रंगीला भाई। और हमारे गयाज भाई क्या कह रहे हैं? गयाज भाई कह रहे हैं रेवड़ी मोहल्ला मशहूर है, यहाँ अयाज और हम सात कजन ने नाश्ता किया, पाए निहारी पराठे, ओए होए होए मक्खन, चाय, अंडा वगैरह, बिल बना 1350 है सिर्फ। अयाज ने कहा वाह, कराची में यही खाना 7000 में पड़ता। बात सही है यार, इतनी सारी चीजें आपने जो बताई हैं, तो 1350 रुपए में क्या, वो वहां पर एक चीज का जो है ना खतरा रहता है, हलाल जानवर और हराम जानवर के गोश्त का, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, अपने आ रही आपने किसी गयास बड़ा सस्ता है मुल्तान और टेस्टी भी। हाँ भाई, टेस्ट तो तुम्हें अच्छा लगेगा ही। इसके बारे में जरा कुछ अपनी चर्चा कीजिए। मुश्क क्या कहती है? कहती है डबल रोटी सख्त वाली। हाँ वो तो कौन सी सख्त वाली डबल रोटी किसके साथ होती है? चेन्नई होते हो, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी छोले, काठियावाड़ी छोले के साथ सही आप जो है डबल रोटी सख्त होती है। नदीम भाई, सानवी कोई चंगा जिया सॉन्ग डेडिकेट कर देता करो, असी भी थोड़े दूर परे दे लिसनर जीते हैं, जीते हैं जी। सो स्वीट मेरी प्यारी सी बहन, 100% आपको ट्रैक डेडिकेट करेंगे आज। आज मेरी बहन ने पहली मरतबा कहा है यार, तो हमने जरूर डेडिकेट करना है नौरीन को गाना। और आगे बढ़ते हैं। सर सलाम सर, नदीम अबरारुल हक का ये गाना है शायद, खोया प्यार खोया दिल का करार, मेरी अखियां सुना दें। अफशां कह रही हैं, अफशां तुम सिर्फ गाना डेडिकेशन के लिए या गाने की फरमाइश के लिए आती हो, ये कुट्टी हो जाऊंगा मैं तुमसे। वैसे भी कभी कभी आदमी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, खाने पीने की बातें हो रही हैं, मुंह में पानी भी आ रहा है, भूख भी लगने लगी है, जरा कुछ बताओ इस हवाले से। हम इंतजार कर रहे हैं, हैं अफशा। और वैसे ये ट्रैक जो है ये ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अगर ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अबरारुल हक ने कोई ऐसा खोया हुआ प्यार जो है उसके हवाले से कोई गाना गाया या नहीं गाया, लेकिन अभी जो गाना है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब हमारे गयाज भाई को और जितने भी हमारे मुल्तान में ऐसा ही हमारे ढोला जितने भी हैं, शराय की ढोला, उन सबको डेडिकेट करता हूँ। एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दे मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने। हैप्पी आवर्स में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और ये हल्ला गुल्ला जारी सारी, जिसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में आइए, के चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। और आसिफ साहब कह रहे हैं, आसिफ साहतानी, साहतानी आसिफ भाई कह रहे हैं हाय बाय, हाय बाय आसिफ भाई, ये क्या बात हुई भाई, और थैंक यू गाय वाजे साहब ने गाने के लिए। और सलाम के बाद कह रहे हैं कि भाई आपने मेरे एसएमएस नहीं रीड किए, क्यों

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कूल किंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
9: 100 FM।
10: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
11: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
12: एंड MCB बैंक For life
13: and higher का नया no frost IoT refrigerator, twin inverter technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving, no frost no worries.
14: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
15: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको, और मैसेजेस आपके 3636 पर मौजूद। खाने पीने के हवाले से बात हो रही है, और आप यकीन माने वक्त ऐसा फुर्र करके उड़ रहा है कि मैं मुकम्मल तौर पर बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान के चारों सूबों के स्पेशल डिशेस के हवाले से बात करूंगा, मगर यहाँ तो यानी कि अभी पाए और निहारी से बात आगे निकल ही नहीं रही, और चनों से भी। और वाह नरीम भाई, ग्रेट सॉन्ग। मेरी रिक्वेस्ट शो खत्म होने के बाद ही पूरी होगी। यार समी इतने प्यारे प्यारे से गाने चला रहे हो यार, आपकी रिक्वेस्ट जो है काल के शो में, ये आपकी सजा है जो आप नहीं आए, गैर हाजिर रहे, क्यों रहे ये भी नहीं बताया। और मलकू का गाना इनको पसंद है भाई, कुकड़ दमे दिया। भाई हमारे गयास भाई कैसा लगा गाना यार बताओ। हमारी प्यारी सी बहना बुलेट प्रूफ हिना भी आ गई हैं और कह रही हैं, सलाम नदीम भाई, आज मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है माशाल्लाह। आज मेरे भाई की बर्थडे है माशाल्लाह, और उसे की पैसों से गिफ्ट लूंगी। उसी के पैसों से गिफ्ट लूंगी, लेकिन उसने तो आपको खर्चे के लिए दिए ना कि जाओ अयाशी करो, और आपने कुर्बानी दी, हमने खर्चे की और अपने भाई के लिए गिफ्ट लेकर आ रही। अरे सो स्वीट। और हैप्पी बर्थडे भाई हिना के भाई के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तरक्कियां दे। इनामो लग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? आंटी चाची और सबको सलाम। भाई सबको सलाम कह दिया हमने, यानी कि समझ रहे हैं ना। जरीन नूर तुम्हारे मैसेज और नहीं आया यार, ये तो गलत बात, और ना ही तुमने संजू को गाना डेडिकेट किया। क्या बात है, खाना शाना बना रही हो? बता दो मुझे, समी गायब हो गया, मुश्क भी गायब हो गई, और अब ऐसा भी नहीं है, यहाँ पंजाबी फूड अथॉरिटी काफी एक्टिव है और ओवरऑल मुल्तान पूरे मुल्क से सस्ता है। मैंने काफी ट्रैवलिंग की है, खुद भी देखा है और डेडिकेशन के लिए उन्होंने थैंक यू कहा। अब ऐसा भी नहीं है तो भाई फिर मुलाओ हमें मुल्तान, हम भी 7,000 की चीज 1,300 में खाकर देखते हैं। बस मेरी आवाज बदले लेना, आवाज ये पता चले कि जानवरों वाली आवाज हो रही है, तो मैं बात करते हुए बोल रहा हूँ। यानी कि समझ रहे ना आप, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैसेजेस आपके 3636 पर आ रहे हैं, वक्त क्योंकि बड़ा महदूद सा रह गया, डेडिकेशन आपकी बहुत सारी हैं, तो जाएंगे एक और ट्रैक के जाने पर। ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी बहन जो कि फैसलाबाद से हमें सुनती है, नौरीन तौसीफ।
9: आपके दौर में तो टेलीफोन थे, तो ये टेलीफोन पर आप समझे कि उस दौर में जब आपने पहली मरतबा तौसीफ साहब से बात की होगी तो फिर आपने क्या कहा?

0: 3-3-2-2-4-4 मुझको हो गया है टेलीफोन प्यार। ब्यूटीफुल ट्रैक नाजिया हसन की आवाज, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपके, चॉइस पेज, आपका नाम, आपका मैसेज, और उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। और हमारे इनामुल हक भाई कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे भाई को, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। लो भाई हिना, बुलेट प्रूफ हिना, तुम्हारे भाई को बर्थडे विशेष आ रही हैं। आज मेहमान आए हुए हैं, बिजी हूँ बहुत काम में, जरीन नूर कह रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी बहन सुन रही है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और क्या लिखा हुआ है भाई, ये दुखी तो समझ में आ गया। दुखी प्रेम नार लिखा हुआ है मेरा ख्याल है। आलम बाला से सलाम, खुश रहें, ये गाना सुना रहे, मेरी याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, ओए होए होए होए, मेरी तस्वीर तुझे रोज रुलाती होगी। भाई दुखी प्रेम आत्मा लिखा हुआ है मेरा ख्याल है। भाई सुना देंगे आपको फिर कभी, लाजमी शोगे, लाजमी आपकी फरमाइश जब आती है तो बहुत अजीब लगता है भाई। मोस्ट वेलकम जनाब, मैं तो बोलता रहता हूँ, आप आते नहीं हैं। गयास का मैसेज है। अरे यार, अब तुमने इतनी सस्ती सस्ती चीजें बता दी हैं खाने पीने की, और सीधा लाहौर चले जाते हैं और वापस फिर कराची। हाँ यार, ये बात तो गयास सही है। ये गयास मेरा शहजादा जो है, ये मुझे हमेशा कहता है यार नदीम भाई छकल आ यार, छकल आ। लेकिन यार इस बार इंशाल्लाह गयास भाई आया तो फिर जरूर एक दिन आपके लिए। और वहां से तो रास्ता भी ऐसा है कि लाहौर से मुल्तान आराम से आप एन, यानी कि समझ रहे हैं ना, दिन स्पेंड किया और फिर रात को वापस। कुछ करते हैं गयास भाई इस तरह की, बस आपने इतना सस्ती सस्ती चीजें बता दी। हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने थैंक यू भी कह दिया, यू वेलकम मेरी प्यारी सी बहन, जीती रहो, मुस्कुराती रहो। और खाने पीने के हवाले से जो बात की है, किसी ने नहीं बताया कराची में चने कहाँ, छोले कहाँ अच्छे मिलते हैं। सिटी कोर्ट के अलावा बताइएगा भाई, सिटी कोर्ट के चने तो हमने खाए हुए हैं, बड़े मजे के होते हैं भाई। मुर्ग छोले, पाए छोले, कोफ्ता छोले, अंडा छोले, सब खाए हुए हैं। और इसके साथ साथ गिजा की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, तो सेहतमंद खाने कौन से होते हैं आपको ये बात पता है? चले अच्छी अच्छी बातें भी आपके साथ कुछ कर लें, जिसमें गजाइत हो, तवानाई हो, वाइटमिन्स हो, मिनरल्स हो, ये मतवाजन गजा होती है जो कि खानी चाहिए, मगर हमें पता ही नहीं है क्या है। अब सब्जियों की मिसालें अगर मैं आपको दूं तो पालक है, गाजर है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, ये विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। आपको पता है ये पत्तों वाली जो हरी सब्जियां जो होती हैं, इसमें फाइबर और आयरन बहुत होता है। इसी तरह फल खाने चाहिए, सेब हो गया, केला हो गया, माल्टे हो गए, अमरूद हो गए, नार हो गया। और अभी जो है आप ये देख ही रहे हैं कि सीजन, फलों का तो सीजन भी होता है ना, अभी आम शाम आए हुए हैं। और आप ये देखिए कि आम के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जो कि आए हुए हैं, ये मौसम ही ऐसा है। खुबानी हो गई और आलूचा हो गया, ये तमाम चीजें, और भी बहुत सारे फल हैं। फल खाएं, यानी कि फल और जो प्रोटीन वाली गिजाएं हैं जिसमें प्रोटीन्स होती हैं बहुत, वो मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
3: एंड MCB बैंक, फॉर लाइफ
4: एंड
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सरदर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें याद रखें एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
8: Like us on facebook.com/fm247365
0: fm247365 वेलकम बैक सोनियो जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर प्यार से आप लोग मुझे कहते हो यानी सोनियो हैप्पी हार्ट्स में मैं हूँ आपके साथ और आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक यल्ला गुला जारी हो सारी और अभी आपको जो है सेहतमंद खानों के हवाले से जो कि हमारी है हेल्दी फूड जिनको कहते हैं अंग्रेजी चीज उसके हवाले से बता रहे हैं प्रोटीन्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन किन किन खानों में जो हम खाते हैं प्रोटीन्स होती है अगर अंडे खाएं हम मछली खाएं चिकन से तो प्रोटीन आप इतनी हासिल कर रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता दालें खाएं चने और लोबिया खाएं अच्छा दालें भी कम खाई जाती हैं मजबूरी में खा लेते हैं वैसे घरों में बच्चे वगैरह जो है ना वो नहीं खा रहे होते लेकिन खैर उनके लिए फिर चिकन बन जाता है उसमें भी प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन जो होता है ये हमारे पट्ठों के लिए जो है ना वो उसके लिए ओके टेक होता है बेहतरीन होता है और ये समझ लीजिए कि जैसे वो मुरम्मत नहीं की जाती किसी चीज की कि आपने घर में कोई चीज रखी हुई है या दीवार जो है दीवार में जब प्लास्टर उतर गया आप प्लास्टर की मुरम्मत करनी है तो ये प्रोटीन जो है ये हमारे पट्ठों की मुरम्मत करता है यानी कि समझ रहे ना आप और रोटी है ब्राउन चावल है दूध है दही है और तो की दशा जिसमें कैल्शियम भी है जिसमें जो है प्रोटीन भी है और खैर आखिर में कुछ और बताएंगे हम आपको फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त सी डेडिकेशन की जाने भाई मुझे मैसेज आया और मैसेज आया हमारे अयूब आफरीदी भाई का यार अयूब आफरीदी भाई अभी भी सफर में अल्लाह ताला उनका सफर जो है वो खैर वाफियत से कटे और उसके दरमियान भी वो सुनते रहते हैं और कहते हैं जनाब की एक गाना यार जीबीएन को माहीन को और निघात को डेडिकेट कर दो तो उनके जानिब से गाना है ये लो पकड़ो

वेलकम बैक आएंगे सोने अच्छा जनाब हमारी प्यारी सी बहन जरीन नौरीन तौसीफ का मैसेज आया कह रही है नदीम भाई अल्लाह गुला करने वाले भाई कहाँ हो गए अयूब भाई वो जैसा कि हम बता चुके हैं आपने नहीं सुना होगा अयूब भाई अपने पर्सनल काम से कहीं गए हुए हैं पाकिस्तान टूर समझ लीजिए और साथ साथ गाहे बगाहे उनके मैसेज आते रहते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका सफर जो है वो बड़ा अच्छा गुजरे और कह रही है कि संजीदा बहना को और मुश्क को आखिरी अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा बिल्कुल कर देंगे और मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर कह रही है शो तो आपका मैं हर हाल में सुनती हूँ जीती रहो मुस्कुराती रहो सलाम जनाब नदीम साहब सॉन्ग हाफ उर्दू हाफ पंजाबी में मुझे सिर्फ छोले चावल पसंद है छोले चावल चना पुलाव होता है भाई छोले की कोई और रेसिपी लिख दें मैं कहां से लिख के दूं अजी चनों के हवाले से एक मुझे बड़ा जबरदस्त सा वाकया याद आया मगर अब वक्त नहीं है एक बादशाह का वाकया है चनों के हवाले से तो ये आपको हम कल के शो में सुनाएंगे बस इतना जरूर है कि आखिर में मैं कुछ कहना चाहूंगा इस हवाले से और उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा समी का मैसेज पढ़ लूंगा वरना वो बोलेगा यार नदीम भाई इस सिंगर का नाम बताओ पश्तो सॉन्ग जो प्ले किया है ये फिल्मी गाना है हम आपको बाद में बता देंगे तो जनाब आखिर में मैं यही कहूंगा कि स्पेशली जो मिडिल एजर्स हैं और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं तो उन सबसे एक गुजारिश है गुजारिश ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सारी जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें खाने पीने के हवाले से मैं बोल रहा हूं चाहे वो फल हो चाहे वो गोश्त हो चाहे वो सब्जी हो तमाम चीजें दूध हो तमाम अल्लाह ताला की इन नेमतों से आप भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने खाने में एतदाल पसंदी लेकर आइए कि जितना खाना होना चाहिए जितना हमें खाना चाहिए उतना ही खाएं किसी चीज की भी ज्यादती क्या होती है इसका अभी तो पता नहीं चलता नौजवानी में जवानी में हर चीज लक्कड़ हजम पत्थर हजम सिलसिलेगार चल रहा होता है मगर फिर बाद में हमें किसी को जो खुदा न खासा डायबिटीज हो गई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या होता है जनाब होता यह है कि हमें परहेज करना पड़ता है ये नहीं खाना वो नहीं खाना उस तो अल्लाह ताला इस चीजों से हर एक को बचाए और अपने खाने पीने में एतदाल पसंदी इस्तेमाल कीजिए जाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है जनाब ये डेडिकेट कर रहे हैं हम संजू को और मश को जरीन नूर की जानिब से और नौरीन तौसीफ की जानिब से अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़

0: म्यूजिक मस्ती, म्यूजिक मस्ती।
1: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, मुझे कहते हैं महफूज। जबरदस्त सा गाना आपने एंजॉय किया और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा गाने सुनवाएं और हम कम से कम बात करें, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन हमारा शो होता है, संडे को दोपहर 3 से 5, जिसमें आपकी फरमाइशें ढेर सारी होती हैं। तो मैं जरा जल्दी जल्दी आपकी फरमाइशें पूरी करता हूं और उसके बाद आपके मैसेजेस भी पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ता। अपने राइट मैसेज में जाइए, क्या चाहिए लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3666 पर। इसके साथ facebook.com/rjmehfooz। आपके लिए एक जबरदस्त सा गाना हसन जहांगीर की आवाज में, ट्रैक है हवा हवा।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe Single Remedies मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. Dr. Hamid General Homeo और Schwabe Single Remedies भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
6: Music.

जी मेरे दोस्त आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। एक अहम पैगाम HBL की जानिब से जो कि कहते हैं कि HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ पाएं मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप, अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच। ये था HBL के हवाले से एक अहम अनाउंसमेंट। इसके साथ साथ आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कौन सा गाना सुनना है। अपना राइट मैसेज में जाइए कि HI लिखिए स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3606 पर। इसके साथ साथ facebook.com/ आज महफूज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या सुनना है। आज संडे और संडे को फंडे बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं।

जो मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या सुनना है। आज है संडे और संडे को फंडे बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, आपका दिन अच्छा गुजर जाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सुबह तगड़ा नाश्ता आपका हो चुका होगा, कोई टकल अच्छे वाले पराठे भी हो सकते हैं, आलू के भरे पराठे भी हो सकते हैं, हलवा पूरी भी हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग वही चाय पापे ब्रेड स्पेशल नाश्ता करना चाहिए छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन। और बहुत सारे लोग लेट लतीफ होते हैं, उठते ही 1:30 बजे के बाद हैं वो, फिर दोपहर का खाना डायरेक्ट खाते हैं। इसके साथ साथ जो कि संडे है तो संडे बिरयानी खास होती है, और स्पेशली जो ससुराल की संडे बिरयानी होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो एंजॉय कीजिए आप संडे को फंडे बनाइए FM 100 पाकिस्तान और म्यूजिक मस्ती के साथ। ढेर सारी फरमाइशें कीजिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए। बाहर चिलचिलाती धूप है तो क्या गम है, आपको हम चिल करेंगे जबरदस्त म्यूजिक के साथ। एक और बड़ा जबरदस्त गाना आप सबके लिए, उसके बाद वापस आएंगे, आपके मैसेजेस होंगे, मैं हूंगा और आप होंगे।

0: You are listening. You are listening. Music. Musti. Musti.
1: बिल्कुल आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। फौरन से बेशतर चलते हैं आपके मैसेज की तरफ और ढेर सारे मैसेज आ चुके हैं आपके। मोहम्मद वकास हमें मैसेज कर रहे हैं, वाह जबरदस्त गाना, बहुत शुक्रिया आपका। इन वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता मैसेज करिए, सलाम करिए, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। इसके अलावा दानिश मैसेज कर रहे हैं और आपने कहा जबरदस्त शो जा रहा है, हैप्पी संडे आपने कहा, सलाम का वालेकुम अस्सलाम। खालिद ने हमें मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, पहली मरतबा आप सुन रहे हैं। जहूर अली में सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। वानिया में सुन रही है, वानिया बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है। मोहम्मद इस्लाम हमें सुन रहे हैं और उन्होंने कहा है जबरदस्त शो जा रहा है और अच्छा गाना है, आपकी तारीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। नवेद अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। सलीमा सुन रही है, सलीमा वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सहर अली हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। इसके अलावा दानिश अहमद हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। इजाज़ अली सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और सदफ हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आज सुबह में सुनते हैं, पसंद करते हैं आपका सुनने को, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली जब आप मैसेजेस करते हैं तो ढेर सारा शुक्रिया मेरी तरफ से आपकी जानिब रवा दवा। आप लोग खुश रहा करें और फरमाइश किया करें दिल खोल के। दो घंटे के प्रोग्राम में मैं ज्यादा से ज्यादा फरमाइश पूरी करने की भरपूर कोशिश करता हूं और उस कोशिश में कितना कामयाब हूं ये आप जरूर बताया करें। अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3636 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJ Mehfooz पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी फरमाइश पर द रियल सिंगर नन अदर देन सज्जाद अली।

0: You are listening to Music Masti.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: कूल किंग।
5: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
0: Music.

0: listening to Music Masti.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
6: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता। लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंदराज complaint.pta.gov.pk या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंदराज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंदराज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज़ है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
2: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: facebook.com/fm247365 fm247365

0: You are listening to Music Masti.
1: It's 4 p.m. The Sound Check is brought to you by
2: Yenu by JazzCash.
3: Abhi JazzCash app download karo aur Yenu ke through payment karo.
4: Azra behen, zara baat to suno. Hato piche, bhago.
5: अहमद हटू वहां से।
6: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: This program is brought to you by
7: MCB Bank for Life.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
9: FM 100.
10: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.
12: Pure emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.

0: You are listening. Music. Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, दिल जाने या रब जाने, बहुत ही खूबसूरत सी मेलोडी आपने एंजॉय की। दोस्तों, आम आ चुके हैं और गर्मी की जो सबसे जबरदस्त सौगात है वो यही है, आम। कहने को आम हैं लेकिन हैं बड़े खास। जैसे जंगल का बादशाह शेर होता है, फलों का बादशाह आम है और आम की इतनी सारी अकसाम हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि ये आम कोई एक आम है लंगड़ा आम, उसको लंगड़ा आम क्यों बोलते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। जिसने भी ये नाम रखा है उसके पीछे लॉजिक क्या थी, क्या वो खुद लंगड़ा था या क्या सिलसिला था, समझ में नहीं आया लंगड़ा आम क्यों रखा गया। इसी तरह से एक आम है अनवर रटोल, जिसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कोई मूछ वाला आदमी, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, गिरबान खुला होगा। चौसा वगैरह तो समझ में आता है कि आम की अकसाम है, लेकिन ये लंगड़ा और अनवर रटोल समझ में नहीं आता कभी, खासतौर पर लंगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। बहरहाल, आम आ चुके हैं और आम लोगों की पसंदीदा फल में से एक है और बहुत सारे लोग जो हैं पूरे आम के सीजन में खाना नहीं खाते, सिर्फ आम खाते हैं या फिर मिल्क शेक पीते हैं, आम का रस पीते हैं, बहुत सारे लोग आम का रस बनाकर पीते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। आम पराठा खाते हैं सुबह नाश्ते में, सुबह आम, दोपहर आम, शाम आम, रात आम, आम ही आम। लेकिन इतना आम नहीं खाना चाहिए कि पेट खराब हो जाए, भाई एतदाल पसंदी। अगर पूरे जितने टाइम तक आम रहेगा, अगर आपको खाना है आम ना, तो एतदाल के साथ खाएं। हर चीज को ना म्यान अरबी के साथ इस्तेमाल किया गया, तो आम जनाब एंजॉय कीजिए गर्मी के मौसम में, लेकिन आम को ठंडा करके खाइए। अगर आप गर्म खाएंगे आम तो तासीर बिगड़ जाती है, दाने भी निकल आते हैं। मेरा जो पसंदीदा आम है वो है चौसा, जो कि अब आ चुका है और सबसे आखिर में आता है और सबसे जल्दी जाता है, लेकिन उसकी खुशबू और उसकी मिठास ऐसी होती है ना पूछो भाई। चले जी, मीठी मीठी बातें हो रही हैं तो हम आपको मीठी मीठी सी म्यूजिक भी सुनवा रहे हैं और जबरदस्त से गाने भी सुनवा रहे हैं। मीठी बातें, मीठे गाने, मीठे आप, मीठे हम, मीठा ये एफ एम 100 पाकिस्तान, स्वीट सा, तमाम लोग स्वीट हैं, आपका होस्ट भी स्वीट है। तमाम लिसनर्स, फैंस और तमाम हमारे सुनने वाले सब स्वीट हैं। आपके लिए शामिल करेंगे प्रोग्राम में गाना कभी कभी, क्योंकि हम कभी कभी अपनी तारीफ करते हैं। आपकी तो बहुत करता हूं मैं तारीफ, मैं कभी कभी अपनी करता हूं। जोश की आवाज एंड द ट्रैक इज कभी।

0: emotions, timeless classics, and soft melodies on FM 100 Pakistan.
1: All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज. 4:26 हो चुके हैं. FM 100 पाकिस्तान का ये कराची स्टूडियो है. आप हमें सुन रहे हैं कराची में 100 की फ्रीक्वेंसीज पे, यानी रेडियो सेट्स पे. और इसके साथ साथ आप कराची से बाहर मौजूद हों, पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हों, आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं, fm100pakistan.com पर जाकर. इसके साथ साथ अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, यानी मोबाइल यूजर हैं, तो आप FM 100 पाकिस्तान की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए. और डाउनलोड करने के बाद आप आसानी दुनिया के हर हिस्से में सुन सकते हैं अपने अपने वक्त के मुताबिक. तो इस तरह से आप हमें सुन सकते हैं और साथ साथ आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है, प्रोग्राम को किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है. आपकी फीडबैक की हमेशा से जरूरत थी, है और रहेगी. तो अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पे रवाना कीजिए. इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज पर भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, या फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं RJ महफूज, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं RJ महफूज, यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं. और हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो है फन विद महफूज, FUNWITHMAHFOOZ, फन विद महफूज. सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे. अस्मा फरीद हमें मैसेज करी हैं, सलाम करी हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. नोमी हमें मैसेज करें, नोमी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम. सना मैसेज करी है, सना बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. मिसेज आसिफ हमें सुन रही है, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. इकरार कुरैशी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. आलिया हमें सुन रही है, आलिया थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम. शुमाइला हमें सुन रही है, शुमाइला बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. आसिफ हमें सुन रहे हैं, आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. खालिदा हमें सुन रही है, खालिदा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम. मैमूना में सुन रही है, मैमूना बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. फजीला में सुन रही है, फजीला थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. मुश्ताक हमें सुन रहे हैं, मुश्ताक बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए. और समन हमें सुन रही है, समन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम. आप सबके मैसेजेस हम जरूर पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पढ़ते हैं ताकि बहुत ज्यादा मैसेजेस जमा हो जाएं, फिर इकट्ठे हम पढ़ दें और आप लोग परेशान ना हो. अगर बहुत सारे लोग एक मैसेज करने के बाद परेशान हो जाते हैं और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैसेज करते हैं, परेशान ना हुआ करें. आपके मैसेज मुझे मिल जाते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि आपके मैसेज मुझे मिल गए हैं. सो आप मैसेजेस कीजिए मजीद. अभी तकरीबन आधा घंटा हमारे प्रोग्राम में और है. हमने आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे गाने आपके लिए प्ले करने हैं, खास आपकी फरमाइश पे, आपके रिक्वेस्ट पे. एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे वापस. आपने कहीं नहीं जाना है, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज.
2: यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक मस्ती.
3: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो. अहमद हटो वहां से.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ.
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें. पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7 365 FM 24/7 You are listening to Music Masti.

0: and soft melodies on FM 100 Pakistan.
1: All right, आ चुके हैं वापस और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इस गाने को सुनने के बाद ऐसा लगता है वाकई कि जैसे आप पहाड़ों की वादियों में हैं, कहीं पर नॉर्दर्न एरियाज में हैं और बर्फ से जमी हुई सफेद सफेद पहाड़ियां हैं और हरे हरे दरख्त हैं और बड़े जबरदस्त से माहौल में आप मौजूद हैं, हरियाली है हर तरफ, लेकिन जिसे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये गाना पूरी फील देता है, पूरी आपको स्टोरी बयान कर देता है, पूरी कहानी बयान कर देता है। ये गाना एक जबरदस्त गाना आपने सुना और यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा। आपकी फरमाइश मुझ तक पहुंचती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपकी फरमाइश को फटाफट पूरा कर दें। बाज़ मर्तबा बहुत सारे लोगों की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती है, दो घंटे के शो में हमारी कोशिश यही होती है मैक्सिमम सॉन्ग्स हम आपके लिए प्ले कर दें, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सुन पाते हैं गाने। तो जनाब, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? हमेशा की तरह वैसे ही गुजरा, मोबाइल हाथ में एक कोने में बैठे हुए हैं और सब मोबाइलों पे लगे हुए हैं, या फिर हल्ला गुल्ला किया कुछ मिलकर अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, अपने भाई बहनों के साथ बैठे, कजन्स के साथ बैठे, मजाक हंसी मजाक तफरी कैरम बोर्ड, आजकल टिक्का पार्टी चल रही है, क्या ऐसा किया आपने? या फिर वही एक कोना पकड़ा हाथ में मोबाइल और अपनी दुनिया। अब यही होता है ना कि बस अपनी दुनिया है। अपनी दुनिया कौन है? अपनी दुनिया मोबाइल सेट है, उसके लिए इंटरनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आपके पास मोबाइल है इंटरनेट है तो फिर आप सबके काम के हैं, लेकिन घर वालों के काम के नहीं रहे। पैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप मोबाइल जरूर यूज करें और फैसिलिटी अगर अल्लाह ने आपको दी है तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन अपने घर वालों को प्रायोरिटीज दें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी फैमिली है, अपने माँ बाप बीवी बच्चे घर बार शोहर, उसके बाद फिर मोबाइल इस्तेमाल करें आप। सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना, वो मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया की दुनिया बिल्कुल अलग है, ये आपके काम ना आने वाली दुनिया है। ये सब चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, अगर कोई काम आपके आता है तो वो आपकी फैमिली है, तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें। एक और बहुत ही खूबसूरत से गाने की आपने फरमाइश की है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग बाय अली जफर, जुगनू से भर दे आंचल।

0: You are listening to Music Masti. Masti.
1: Masti. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB Bank for life.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 like us on Facebook.com/FM247365 FM 247365.
8: You are listening. Music Masti. जी आ चुके हैं वापस, आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है और 13-14 मिनट हमारे प्रोग्राम में और रह गए हैं, जिसमें हमने दो खूबसूरत से गाने आपके लिए पेश करने हैं। लेकिन उससे पहले आपके मैसेजेस हम पढ़ देते हैं। तनवीर हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम असलाम, आपके सुनने और पसंद करने का शुक्रिया। मुबशर ने मैसेज किया, सलाम कहें, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। आलिया हमें मैसेज करी है, सलाम करिए, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। मधिया हमें सुन रही है, मधिया बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, वालेकुम असलाम। मेहताब हमें सुन रहे हैं, मेहताब वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। फराज अहमद हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। फौजिया हमें सुन रही है, फौजिया बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। खालिदा हमें सुन रही है, खालिदा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वालेकुम असलाम। नसरीन हमें सुन रही है, नसरीन बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। असमा फरीद हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कमर तनवीर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। इसके अलावा अंसारी हमें सुन रहे हैं, अंसारी ने सलाम कहा है, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं और आप सबकी पार्टिसिपेशन हमेशा मेरे लिए अहमियत के हामिल रही है। आपकी फरमाइश पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: You are listening. You are listening. Music. Masti. Masti. Masti.
1: जी मेरे दोस्तों, वक्त आन पहुंचा है कि अब हम आपसे अलविदा कहें, आपसे इजाजत चाहें, आपकी दुआएं लें और आपको दुआएं दें। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम लोगों का कि आपने मुझे सुना, दो घंटे मैसेजेस किए, फेसबुक पे मैसेजेस किए, 3636 पे मैसेजेस किए, या खामोशी से सुनकर अपना प्रोग्राम अपना बनाया। आप सबके मैसेजेस करने का बहुत बहुत शुक्रिया, खामोशी से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, साइलेंट लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने वालों का शुक्रिया। आप लोग बड़े प्यारे हैं और बहुत स्वीट हैं। जहां रहे खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का अपने परचम का करें एहतराम। और जब भी दुआ अगले हाथ उठाएं, महफूज को FM 100 पाकिस्तान को रखें अपनी दुआओं में जरूर जरूर जरूर जरूर याद। अगर आपके वालिदैन हयात हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे यानी अगले इतवार दोपहर 3 बजे। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नजर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़।

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियत एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
3: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL
4: एंड जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
5: एंड लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
5: एंड लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
3: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाइन और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
7: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
8: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे, होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल ना करने दें और ना ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम.
0: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी. एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL.
0: एंड
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय चेस कैश.
0: एंड
4: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
4: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: एंड
6: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
0: एंड
7: MCB बैंक फॉर लाइफ.
8: Like us on facebook.com/FM247365.

0: start out.
1: MCB One Current Account, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB One करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
4: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार, बाइख्तियार।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: किसने कहा था

0: location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: This program is brought to you by
6: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
7: and Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता AC,
0: and HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL,
8: and जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश,
0: and
9: Live Lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
10: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
11: Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
0: And aaj hi hire mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye. And
12: MCB Bank for life.
13: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
14: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखी।
15: का टाइम सी मनु ऐसे के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
16: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाईया, सानू मारया, सानू कुटिया।
13: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
17: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
13: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں، انسانی سمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
18: connecting,
3: holding you,
18: holding
3: with FM 100.
19: FM 100. FM 100.
20: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
21: Only music, no RJ talk.
20: This is FM 100.
22: Come on.

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: MCB Bank for Life.
3: Azra behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: कूल किंग।
8: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
9: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ, लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
13: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
14: ये क्या है भाई?
13: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
15: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
13: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
12: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज़ कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
5: and
6: Jo Chahe Khareedo, Paise Aaram Se De Do, Ye Lo By Just Cash,
5: and
7: Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today.
5: And

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Cool King. Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil, jaise chalta phirta AC.
4: Haier ka naya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
4: Haier No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de Mobile App se complete control. No Frost, no worries.
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL.
6: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
7: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
1: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
8: and Jo Chahe Kharido, Paise Aaram Se De Do, Ye Lo Bhai Just Cash,
1: and
8: Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today.

0: जरा बहन जरा बात तो सुनो,
1: हटो पीछे भागो।
2: अहमद हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो, और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Hire mini LED TV ke saath 3 mahine ki TapMad subscription bhi with free installation. 144Hz picture quality. शानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना। किसने कहा?

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and HBL Freedom Account, Jahan Khwab वहाँ HBL,
5: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जस्ट कैश,
6: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे,
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
4: एंड
8: तूफान है, हर जीत की पहचान है,
4: एंड
5: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके,
4: एंड
9: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
10: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan.
1: Trader ko clean. Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving, no frost, no worries.
2: Cool King.
3: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई.
4: लगाओ Cool King Hair Oil और cool हो जाओ. Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता एसी.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त

0: लाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो क्रॉस, नो वरीज।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
0: HBL Freedom account ke saath muft IDFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM।
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेज।
0: वहाँ HBL
6: एंड जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, ये लो बाय जैज कैश
7: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: HBL Freedom Account. Jahan khwab. वहाँ HBL
0: एंड
4: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: एंड
4: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
4: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
6: अजरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
7: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत हुकूमत सिंध
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
9: कूल किंग
10: अबे देख के नहीं चलाता क्या
11: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों जब देखो
12: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
13: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे

0: देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
2: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today.

0: से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जस्ट कैश।
0: अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today.
4: Pehli baar egg and yogurt ke saath. Ab paalak se 100% khushki jaye. Aage badhne ka confidence hai. Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with yogurt and egg. 100% aage badho bina ruke.
5: Higher Mini LED TV के साथ 3 महीने की Tap Mad subscription भी with free installation, 144Hz picture quality, जानदार, बनाए हर मैच को शानदार, powerful KEF British speakers और woofers का amazing sound, करे आपको excitement से surround, 3-year warranty और 6-month free replacement के साथ, आज ही Higher Mini LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। Higher, more creation, more possibilities।
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है।
3: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: facebook.com/fm247365 fm247365

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खार वहां HBL।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
1: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैट सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Kisne kaha tha paise

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब पार्लर से 100% खुश की जाए

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है।
3: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मनशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: तोहीने रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
6: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan hai ye, har jeet ki pehchaan hai ye.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
4: Ahmed, hatu wahan se.
5: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
10: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
11: 100 FM.
12: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
13: हायर कन नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
14: FM247365.
15: FM 100.
16: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamualaikum Pakistan.
17: Assalamualaikum Pakistan. Pakistan.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: जरा बहन, जरा बात तो सुनो।
1: हटो पीछे, भागो।
2: अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
4: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi Jazz Cash download karo. Pao Instant Load, exclusive offers or discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. Jazz Cash hai na.
5: This program is brought to you by
6: Hire Kar Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: 100 FM.
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से बआसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM.
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
0: This public service message is brought to you by FM 100 रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए
6: बैन अल-अक्वामी सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान निकाल ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है अगर आपको अचानक तेज बुखार शदीद सर दर्द जिस्म और जोड़ों में दर्द मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है डेंगू से बचाओ आपकी एहतियात आपकी हिफाजत
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हायर कन्नया, नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
7: बैन अलावा सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
9: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
10: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
11: घर के अफराद और आमदनी में तवाज़ुन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: Let's celebrate
15: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries।
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग,
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो, और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: कूल किंग, बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
5: This program is brought to you by
6: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
7: Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
9: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज़ कैश।
5: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
8: कूल किंग चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
5: facebook.com/fm247365
6: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो।
1: अहमद हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैस कैश है ना।
5: FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: Cool King. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
2: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: कुकिंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट। दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/fm247365
7: fm247365.
8: Back to back, back to back, only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

कुकिंग। चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम।
2: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: कुकिंग।
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
3: facebook.com/fm247365
5: FM 247 365

जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए।